विशेष आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा।

0: योपालि यस्तै भयो क्यारे, अर्को साल पक्कै बिहे गर्छु ल।
1: ब्याङ्किङ खैमत बिले चौधरी एटीएम मोबाइल दे इन्टरनेट ब्याङ्किङ गोप्य विवरण आरी खै बिले तोई माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कल पर्दिमो समय न्यो ठगदिल खामो ब्याङ्कर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय ब्याङ्के निल पर्दिमो न्यो तने सतर्क तना ठजरिक्या बचेना सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: समीची हूँ चौदह के में बोधे लोटी पर दी रो बहले ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
2: आई समीज लोटरी पर दी हूँ छापताई गुदी
1: भर दी आ भर दी लोटरी खाली पर दी बा सैली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खन बनी खाई विषय खाई मई विश्वास आलन होने खाले पनी आप विवरण खाई मई आपिन खबई बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप बनी आरी
3: सिद्धार्थ
2: बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
5: नमस्कार हल्दर साहब क्यानन तपाई त पाइल्सको अपरेशन गर्न अस्पताल जानुभएको छ भन्ने सुनेको थिएँ तपाई त छिट्टै आउनुभयो अपरेशन नगरी आउनुभयो क्या हो
6: क्यानन पोखराको चरक मेमोरियल हस्पिटलमा वरिष्ठ डाक्टरले आधुनिक प्रविधिबाट अपरेशन गर्दा त छिट्टै निको पो हुँदो रहेछ नि कान्छ
5: अच्छा क्यानन मेरो बुढीको पित्त थैलीको अपरेशन पनि त्यही चरक मेमोरियल हस्पिटलमा गरेको हो नि हल्दर साहब केही दिनमै मेरो बुढी त ठमठम्ती हिँड्ने भाइ साह्रै राम्रो रहेछ त्यो हस्पिटल त अनि हल्दर साहब चरक मेमोरियल हस्पिटलमा हामी भारतीय भूभू सैनिकका लागि स्वास्थ्य सेवा ECHS स्वास्थ्य सेवा पनि छ नि
6: क्यानम त्यही भएर त चरक मेमोरियल हस्पिटलमा उपचार गर्न गएको हो नि
7: चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरामा भारतीय भूभू सैनिकका लागि स्वास्थ्य सेवा ECHS स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ
8: साथै ओपीडी सेवा आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म यो सेवा लिन ECHS कार्ड र रिफरल लिएर आउनुहोला पुनश 70 वर्ष माथिका भूपूहरूलाई रिफरल चाहिँदैन
7: विस्तृत जानकारीका लागि सरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061-552-493 552-494-582-778

0: सुनत ना, आइए हम लोग दही बजे
1: ए समय को साथ में जितू सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: सत्तरी र 063-4141-268
1: स्वच्छ पानी स्वस्थ जिन्दगानी
0: अनुरोधक वालिङ साना सहरी खाने पानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था वालिङ।

0: रेडियो आधी खोला 105.4 मेगाहर्ट्ज
1: बैंजी खैमत बिली चौधरी एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आ रही खई बिले तो ही माध्यम

एस आदि खोला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार स्याङ्जा।